0: जय श्री देवा।
1: इसे स्वामिनी उप सबिनम सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नोहन से गे आत्मन गे अनुभावेन में पांडु परिशुद्धवाद करण में नपियाय दिब अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अपे स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पू कमेत्तिन पवरादी मिट पेर पूपे रागेनु महान से तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन श्री श्रावकेंट दुन सेक ඔබ සැම මේන්ගෙන අනුභව කරන්න සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मेनव। मे की दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा।